मौला सामिन कराम, ये सदाए तुर्की है, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 9 अगस्त बरोज़ इतवार है। इस वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। आप हमारी नशरियात को शॉर्ट वेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज़ के अलावा तुर्कसैट 3A ईस्ट और 4A वेस्ट सेटेलाइट समेत हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में अलल तरतीब खबरें होंगी, उसके बाद सिलसिलेवार प्रोग्राम फ़िलिस्तीन की तारीख और पस पर्दा कहानियाँ और शोरश ज़्यादा अफ्रीका पेश किए जाएंगे। आज हमारे साथ तकनीकी तआवुन कर रहे हैं गोखान पोलाद और आपका मेज़बान सगीर अहमद।

तमाम ममालिक को इस फ्रेमवर्क के तहत लाना है। माहिदे की मुस्तकबिल में तौसी का एक अहम इशारा देते हुए फिदान ने कहा कि उनका मानना है कि मिस्र अगले मरहले में इस माहिदे का हिस्सा बनेगा। ईरानी सदर मसूद पजिश्कियान ने कहा है कि हालिया सफातकारी के बावजूद वाशिंगटन के तई तेहरान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि अमरीका इस्तेमार पसंद है, अमरीका मुजरिम है, इसमें कोई शक नहीं है। पजिश्कियान ने वाशिंगटन के साथ दस्तखत शुदा मफाहिमनामे का दफा किया और इस बात पर जोर दिया कि ईरान ने कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने अमरीका पर अपने हुरमस में मुतबादिल बहरी रास्तों की तलाश के जरिए माहिदे की खिलाफ वर्जी करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। ईरानी आला तरीन सिक्योरिटी अहदेदार का कहना है कि आबनाए हुरमुज उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक अमरीका अपनी जारहाना पॉलिसियाँ तब्दील नहीं करता और ईरान के मुतालबात पूरे नहीं करता। हफ्ते के रोज़ जारी एक बयान में ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ने कहा कि स्ट्रेटेजिक बहरी रास्ते को दोबारा खोलने के लिए वाशिंगटन को अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। उन्होंने ये छह शराइत पेश की: ईरानी रहबर आला के खिलाफ धमकियां बंद की जाएं, ईरान और उसके इलाकाई इत्तेहादियों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां मुस्तकिल तौर पर रोकी जाएं, ईरानी नाकाबंदी में मुलविस अमरीकी बहरी और फिजाई अफवाज को वापस बुलाया जाए, हालिया तनाज़ात के दौरान होने वाले नुकसान का तहरान को मुआवजा दिया जाए, अमरीकी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, ईरान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएँ। जुल्कदर का कहना था कि ये मुतालबात ईरानी अवाम की उमंगों के तर्जुमान हैं जिनके लिए गुज़िश्ता छः दिनों से मुल्कगीर रैलियाँ निकाली जा रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल, जंग हो या मुज़ाकरात, इन मुतालबात से पीछे नहीं हटेगी। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब आबनाए हुरमुज़ में जहाज़रानी के मुस्तकबिल पर मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। पाकिस्तान और कतर की सालिसी से 18 जून को ईरान और अमरीका ने एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए थे जिसके तहत फ़ाल दुश्मनी ख़त्म करके वसीतर माहदे के लिए मुज़ाकरात शुरू किए गए थे। इस मुफाहमतनामे में आबनाए हुरमुज़ के ज़रिए तजारती जहाज़रानी की बतदरीज बहाली शामिल थी। ताहम दोनों ममालिक की जानब से शरायत की खिलाफवर्जी के इल्ज़ाम के बाद इस पर अमल दरामद रोक दिया गया है। ईरानी रहबर आला के उमूर बैनुल अक्वामी के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा है कि गैर मुल्की अफवाज को खित्ते से चले जाना चाहिए क्योंकि उनकी मौजूदगी ही बदअमनी की बुनियादी वजह है। एक्स पर जारी अपने एक बयान में विलायती ने कहा कि हालिया पेशरफ्त, मुसल्ला अफवाज की लचक, ईरानियों की साबित कदमी और मुजाहमती महवर की जुर्रत की अक्कासी करती है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका और सेहूनी हुकूमत की शिकस्त ने इस यकीन को मजीद पुख्ता कर दिया है कि गैर मुल्की अफवाज जो बदअमनी की असल वजह है उन्हें खित्ते से निकल जाना चाहिए। विलायती ने मजीद तफसीलात फराहम किए बगैर ये भी कहा कि इलाकाई रियासतों के दरमियान बढ़ता हुआ तआवुन खित्ते को महफूज बना सकता है। याद रहे कि इलाकाई तनाव में उस वक्त शदीद इजाफा हुआ था जब इसराइल और अमरीका ने मुश्तरक तौर पर ईरान के फौजी, जौहरी और तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए मरबूत हमले किए थे। जवाब में तेहरान ने पूरे खित्ते में इसराइली और अमरीकी अहदाफ पर मिज़ाइल और ड्रोन हमले किए थे। बाद अज़ां पाकिस्तान और कतर की सालसी से ईरान और अमरीका ने एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जिससे फ़ाल दुश्मनी का खात्मा हुआ और एक हतमी माहदे के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। तहम ये मुज़ाकरात खलीजी तेल और गैस की बरामदात के लिए इंतहाई अहम समझे जाने वाले बहरी रास्ते आबनाए हुरमुज़ में जहाज़रानी की आज़ादी और बहरी सलामती के तनाज़ात पर तातुल का शिकार हुए थे।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: इसराइल के सरकारी नशियाती इदारे कान के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के सरबरा जनरल ब्रैड कूपर ने ईरान और महसूर गजा से मुतालिका पेशरफ पर सीनियर फौजी हुकाम से बातचीत के लिए इसराइल का एक मुख्तसर दौरा किया है। कूपर बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाले इजलासों के बाद इसराइल पहुंचे, जिनका मकसद इलाकाई तनाव को कम करना था, क्योंकि हालिया फौजी तसादुम के बाद वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी बरकरार है। गजा में शहरी दिफा की टीमों ने 4 रोज की तलाश के बाद गजा शहर में एक तबाह शुदा रिहायशी इमारत के मलबे से 19 फलस्तीनियों की बाकियात निकाल ली हैं। इसके बाद टीमें दूसरे मकाम की तरफ रवाना हो गईं, क्योंकि इसराइल की नस्लकुशी की जंग के दौरान तबाह होने वाली इमारतों के नीचे मजीद लाशें दबी हुई हैं। शहरी दिफा का कहना है कि बहाली और लाशें निकालने का काम इंतहाई महदूद वसाइल के साथ किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ एक खुदाई

करने वाली मशीन, एक बुलडोजर और ट्रक शामिल है। नागासाकी ने इतवार के रोज शहर पर अमरीकी एटम बम गिराए जाने की 81वीं बरसी मनाई। ये बरसी एक ऐसे वक्त में मनाई गई है जब मुल्क में दरीना अमन पसंदाना मौकफ को चैलेंज करते हुए जौहरी हथियारों पर नई बहस शुरू करने की कोशिशें तेज़ हो रही हैं। नागासाकी के मेयर शिरो सुजुकी ने जनूब मगरबी शहर में हमले की सालाना यादगारी तकरीब के दौरान अमन का ऐलामिया पढ़ते हुए कहा कि जौहरी हथियार कोई लाजमी बुराई नहीं बल्कि एक मुतलक बुराई है और ये इंसानियत के साथ कभी बकाए बाहिमी के साथ नहीं रह सकते। वज़ीर आज़म सानाए ताकाइची ने गुज़िश्ता जुमेरात को हिरोशिमा की यादगारी तकरीब में दिए गए अपने पैगाम को दोहराया कि जापान अपने तीन गैर जौहरी उसूलों को बरकरार रखे हुए है। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:02 पर खामोशी इख्तियार की गई। ये वो वक्त था जब अमरीकी बम्बार तैयारे ने फैटमैन नामी प्लूटोनियम आला गिराया था जो नागासाकी पर धमाके से फट गया था। यह यादगारी तकरीब एक ऐसे वक्त में हो रही है जब मशरक़ वस्ती का तनाज़िया और रूस यूक्रेन जंग दुनिया को हिला रही है। सुजुकी ने जौहरी ताकतों और जौहरी रोकथाम पर इन्हिसार करने वाले ममालिक को जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की जंग के बढ़ते हुए ख़तरे से खबरदार किया और निशानदेही की कि अब भी 12,000 से ज़्यादा जौहरी वॉर हेड्स मौजूद हैं। उन्होंने मशरक़ वस्ती और यूक्रेन के तनाज़ात पर तशवीश का इजहार किया जहाँ जौहरी ताकतें रूस और अमरीका मुलविस हैं। तकायची ने कहा कि इस अहद के तहत के नागासाकी जौहरी हमले का शिकार होने वाला आखिरी मकाम रहे और जंग में जौहरी तबाही की हौलनाकी का तजुर्बा करने वाले वाहिद मुल्क की हैसियत से जापान ऐसे हथियारों से पाक दुनिया के क़याम के लिए हकीकत पसंदाना और अमली कोशिशों को फ़रोग देगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि एटमी बम्बारी के हकायक के बारे में दुनिया भर में दुरुस्त समझ बूझ को फ़रोग देने की अहमियत रोज़ बरोज़ परवान चढ़ती जा रही है। दूसरी जंग अजीम के दौरान 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर होने वाले बम धमाके में साल के आखिर तक अंदाजन 1,40,000 मुतासरीन हलाक हुए थे जबकि 3 दिन बाद नागासाकी शहर पर गिराए गए एटम बम से अंदाजन 74,000 अफराद लुकमा अजल बने। जापान ने 15 अगस्त को हथियार डाल दिया जिससे दूसरी जंग अजीम का खात्मा हो गया था। और कैनेडियन हुकाम ने ब्रिटिश कोलंबिया में तेज़ी से फैलने वाली जंगल की आग के बायस 20,000 से ज़ायद अफराद को निकालने पर मजबूर होने के बाद हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला डेविड एबी ने कहा कि घरों और इमलाक का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और हालात में तेज़ी से तब्दीली की वजह से कुछ लोग महसूर होकर रह गए हैं। इत्तलात के मुताबिक शोलों के आगे बढ़ने पर एक ही इलाके से 50 से ज़ायद अफराद को हवाई जहाज़ के ज़रिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।

इथोपिया में साल 2021 में कायम होने वाले नेशनल डायलॉग कमीशन के बरसों पर मुहित तादीबी अमल के बाद दारुलकूमत अदीस अबाब में तकरीबन 4,000 नुमाइंदों की शिरकत से शुरू होने वाली नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस महज मुल्क की अंदरूनी सियासत के लिए ही नहीं बल्कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मुस्तकबिल के लिए भी एक इंतहाई अहम और फैसला कुन मोड़ की हैसियत रखती है। इस कॉन्फ्रेंस में रियासती ढांचे से लेकर निज़ाम हुकूमत तक, आइनी असलाहत से लेकर तारीखी शिकायत तक और वफाकी शहरों की हैसियत से लेकर रियासत और मजहब के ताल्लुकात तक 8 बुनियादी उन्वानात के तहत जामे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। यह वाज़ह किया गया है कि इस अमल के अख्तिताम पर सामने आने वाला मुआहिदा लाजमी नौइयत का होगा और आइनी तब्दीलियों की बुनियाद बन सकेगा। और सैम के शुमाली और मशरकी अफ्रीका के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कान देवे जियोलू का इस मौजू पर तज्जिया पेश है।